ढाला वर को धोरो ताकि यो मोती मारती आपको दीवो यो मोती मारती कोई गलमोरो तीसु पतानी तीन बाबा सोतोमो तीसु पतानी तीन बाबा सोतोमो lanjur jaluk ditambani ora bisa merkudoro dawuh romo pikulun wis kaya dibontos kaya dijeblung akeh yang kawas